ये शब्द पग त्रिलोचन दा है। पग त्रिलोचन जी अपनी वाणी विच उपदेश करदे हन, ऐ भाई परमेश्वर दा नाम जे विसर जावे तां

गोविंद नाम मत बिसरे। ए बहन, उस गोविंद दा नाम ना विसरे, क्योंकि जे नाम विसर गया ता फिर की हाल होवेगा, जुड़ना विच भटकना पवेगा, दुखी होवांगे इंसान इस दुनिया विच जन्म।

अपनी लड़कियां नाल प्यार करता है, सोने मकान बनाने वास्ते यतन करता है। ऐसे इंसान भी ने जिहड़े इन्हां चीजां नाल प्यार करदे, पर उन्हां नूं अखीर मिलदा की है? आप जी बयान करदे ने ते जिहड़ा इंसान परमेश्वर दे नाल प्रीत करे उन्हूं की मिलदा है? भगत त्रिलोचन जी अपने शब्द विच बयान करदे ने, अखीर नतीजा ये कढ़िया, दुनिया नाल प्रीत करो तां दुख मिलदे ने, उस गोबिंद दे नाम दे नाल प्रीत करो तां उहदे चरणां विच जगह।

अंत काल जो लक्ष्मी सिमर लक्ष्मी के माया जेड़ा इंसान सारी उम्र यही सोचता रवे कि वध तू वध पैसे कमा लो भावे ओदे वास्ते पाप करने पे भावे ठगी करनी पवे भावे डाका मारना पवे पर पैसे जरूर कठे कर अंत वेला आंदा नाम नहीं जपया मरण लग गए ते तामी चिंता करता है कि दुनिया तू एवें तुर चले हैं मन मुताबक कमाया भी नहीं कमाई अंत वेले माया वाल ध्यान मौत हो गई तां भगत जी बयान करते ने उस इंसान नू अगला जन्म कदा

के मन मुताबक कमाया नहीं कमाई ता अगला जन्म ओनू सप दा मिलदा है। आप नू पता है कि सप जड़ा है माया ते बहिंदा है। ओ इंसान सप दी जून धारण करके अपनी ए माया वाली तृष्णा

कोई निशान, जेड़ा अंत वेले भी औरत वाल ध्यान रखे नाम नहीं जपदा, बेसवा जौन वल वल आता रहे, उस इंसान नू अगला जन्म बेसवा दा मिलदा। बेसवा दा जन्म लैके वो इंसान अपनी काम दी तृष्णा पूरी करदा है। ए जड़ियां बेसवा आपा देखने हैं, ए ओ कामी पुरुष ने जेड़े हर वक्त काम

अंत काल जो लड़के सिमरे जिड़ा इंसान सारी उम्र तिया पुत्रा वाली ध्यान रखे नाम ना जपे अंत वेले भी ओदा ध्यान लड़किया वाल है नाम नहीं जपया नाम वाल ध्यान नहीं जे लड़के होए आग्या कारनी तां दुखी जे लड़का कोई नहीं होया तां दुखी ए नहीं कहंदा कि परमेश्वर जे तू दिता तेरी खुशी जे लड़का नहीं दिता तां भी तेरी खुशी उदा नाम नहीं जपया अंत वेले भी लड़के दा ध्यान मौत हो गई

नाम ना जपे मौत हो जाए ता ओदा अगला जन्म सुकर जोन अगला जन्म ओनू सूर दा मिल जाए। आपने देखे होवेगा के सूर दे सत सत अठ अठ बच्चे होंदे ने। इस तरह ओ इंसान सूर दी जुने पै के अपने बच्चियां वाली तृष्णा पूरी करता है। भगत जी कहंदे ने जिहड़ा अंत वेले लड़कियां वल ध्यान रखे अगले

कोई मकान भी ना बना सके, सिमरन नहीं कीता, मरन लगे हां भी सोने मकाना वाले ध्यान, इसे चिंता विच ही मर गए हैं।

सतगुरु जी ने यह कहा कि दुनी चंद तेरा पिता जोना विच भटक रहा है, फिर तिना दिना दा भुख है, नाले ओ रोटी नहीं खांदा, ओ ता मास खांदा। तेरा पिता बगियाड़ दी जोन विच है। ए गल सुनी जिन्ने लोग बैठे सन सारयां नूं रोटी खानी भुल गई, सारयां दी निगाह धन गुरु नानक साहब दे चेहरे ते गड्डी गई। दुनी चंद भी हैरान हो गया, हाथ जोड़ के कहन लगा, पातशाह जे मेरा पिता मुक्ति नूं प्राप्त नहीं होया और बगियाड़ दी जून विच है, मैं कई सालां तों हजारां रुपए खर्च करके इस राज भंडारे करना वा, ते की मेरा ये दान पुन मेरा ये भंडारा करना सब व्यर्थ चला गया। साहब जी कहन लगे नहीं तू नहीं चंद, तेरे दान पुन दी सदका ही अकाल पुरख ने सानू तेरे कोल भेजिया तेरे पिता नु मुक्त करन वास्ते। इस तरह कर, ये जिहड़ा प्रशादा तू साडे सामने रखे है इहनू चुक लै, लाहौर दे दक्षण वाले पासे 3 मील दी विथ ते इक झाड़ी है, उस झाड़ी दे कोल तेरा पिता बगियाड़ दी जून विच तिन्ना दिना दा भुखा लम्मा पे है। डरी ना, कोल जाके आवाज मारी, वो सिर चुकेगा, मानो तेनू बुला रहा होवेगा, ते ए प्रशादा ओदे अगे रख दे। दुनी चंद ने प्रशादा टकिया, उस प्रशादे ते तन गुरु नानक साहब की मेहर की निगाह पै चुकी सी। प्रशादा लैके दुनी चंद शहर के बाहर तुर पे है, ते भगत त्रिलोचन जी कहिंदे ने ऐ भाई जे जूना विच नहीं भटकना ते आ फिर परमेश्वर का नाम जप।

समझदी मैं बड़ी सोहनी है, मैं बड़ी तेज भजनी है, मैनू कौन फड़ सकदा। इसे हंकार दे विच ही वो मौत नूं भुल जांदी है।

सब जग बाधो काल को, सारा जग मौत दे वस है, सारिया नू मौत आनी है, पर कदू आनी किसे नू पता नहीं। मरना जरूर है, मौत तू कदी कोई बचिया नहीं, पर समझ नहीं आती इंसान फिर भी क्यों हंकार करता है। पता भी है मैं मर जाना, मेरे नाल कुछ नहीं जाना, पर इंसान फिर भी पाप करता है, फिर भी नाम नहीं जपदा, कहता ए भी मेरा ए भी मेरा, पर कुछ भी इसका नहीं। प्यार ऐसा ही है, कहते सारे ने कि मेरा बड़ा प्यार है, पर धन गुरु नानक साहब कहते ने को मरे ना मोया नाले, जिहड़ा इंसान मर जांदा है उहदे नाल मरदा कोई नहीं। एक औरत आदमी दा पुत्र मर गया, बड़े रो, मां भी कवे बेटा तू ना मरदा मैं मर जांदा, पिता भी कवे तू क्यों मर गया तेरी जगह मैं मर जांदा, मेरी उम्र तेनू लग जांदी। इन्हां दोनों दा ए रोना देख के कोई महापुरुष उस पासे आ निकले।

देव जी महाराज गौड़ी चेती महला पहला दा इस शब्द जो आप जी ने श्रवण किया है, इस शब्द के द्वारा साड़ी जिंदगी दा जो एक सफर है अते ओ सफर दी मंजिल नू असी जो खो चुके हैं उस दी बाबत सानू महाराज एक बड़ी तकड़ी जोल्ट दे के सानू वापस जगा रहे हैं। सच्चे पातशाह साहिब श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज एक पंक्ति दे विच बयान करते हैं कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। वो जीवन नू एक यात्रा आखते हैं अते आखते हैं कि ए सफल हो गई है। इमेजिन करो कि वो किस किस्म की थ्रिल होएगी, किस किस्म का प्लेजर होएगा, किस किस्म की स्टेट ऑफ माइंड होएगी जिस दे विच एक चेतना ए अपने जीवन च खुद आख सके, उसनू जी सके, उसनू इम्बाइब कर सके कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी ऑफ अस कैन क्लेम दिस कि मेरे जीवन की यात्रा सफल हो गई है। हाउ मैनी, इनफैक्ट सानू तो यह भी नहीं पता कि जीवन की कोई यात्रा भी है। सफल होना तो बहुत दूर की गल, सानू यह भी नहीं पता कि असी अपने जीवन की यात्रा च जा किधर नू रहे हैं, मंजिल वल नू या मंजिल तो दूर। बाबा जी ने अपनी बाणी दे विच एक पंक्ति उच्चारण की है जिथे वो आखते हैं असी मंजिल दे करीब तक की जाना, असी मंजिल तो बहुत ज्यादा डिस्टेंट हो गए हैं, बहुत ज्यादा दूर चले गए हैं। पंक्ति सुन वाली है, कहते हैं साकत नर प्राणी सद भूखे, नित भूखन भूख करीजे, तावत ताए तावे प्रीत माया, लख कोसन को विथ दीजे। कहिंदे यात्रा सफल ते की करनी, यात्रा सफल उदों हुंदी है जदों यात्रा दी जो डेस्टिनेशन है उत्थे पहुंच जाया जाए, उदों जो यात्रा कंप्लीट हो जाती है, सफल हो जाती है। पर जे यात्रा नालों उसकी मंजिल नालों उसके डेस्टिनेशन नालों जो पाड़ है, गैप है, डिस्टेंस है, दूरी है, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, वधदी ही जाए, इसका अर्थ यह होया कि यात्रु नू ए नहीं पता कि वह जा किधर नू रहा है। बाबा जी ने बाणी दे विच एक जगह आख्या है साडे मतलब कि तुहाडी हालत यह है कि तुहानू ए पता नहीं तुसी किधरों आ रहे हो और किधर नू जा रहे हो, बस ए आख रहे हो आई एम वेरी बिजी, आई डू नॉट हैव टाइम। कोई पूछे तो कर की रहे हो, दैट आई डोंट नो, जा किधर रहे हो, दैट आई डोंट नो, बट आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं। किधर जा रहे हो इसका पता नहीं, किधरों आ रहे हो इसका कोई पता नहीं। महाराज जी अपनी बाणी की पंक्ति आख दें, कहते हैं

मेरी सेजड़ी आडंबर बने। अवनाशी वर सुनिया प्रभ आवत सुनिया, मेरी सेज सोही देख मोही, गुरु के सिख दा हिरदा हिरदे दी सेजा हिरदे दा मंदर, उदो जगमगा उदो शोभनीक हुंदे जदों साहिब प्यारा इहदे हिरदे दी सेजा दे उत्ते बैठा इस नूं आप प्रतख दीदार दिंदा है। जदों वसदा हिरदे दी सेजा दे उत्ते ते फिर गुरु के सिख दे रोम रोम विचों शुकराना निकलदा है।

अज श्री अबचल नगर विच गुरु गोबिंद सिंह महाराज कलगी धर दशमेश पिता दे चरणा च बेनती करके नंद लाल जी कह रहे हैं, हे सतगुरु, सिख पंथ की सिरजना करन वाले खालसा पंथ नू रचनहार साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज गुरसिख की रहत नू आप दर्शाउणा करो। गुरसिख का कर्म की है? सतगुरु गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने भाई नंद लाल दे सवाल

पहला नियम है गुरसिख दा कि गुरु की संगत करनी, सत संगत अंदर पहुंचना अमृत वेले इशनान करके। ते जेड़ा सतगुरु गरीब नूं आए सचे पातशाह जी महाराज अंदर शरण आउण वाला गुरसिख नहीं, जेड़ा अमृत वेले उठ के इशनान नहीं करदा, प्रात काल सत संग तों बगैर व्यर्थ कर दिंदा, गरीब नवाज कहिंदे हन ओ गुरसिख तनखाइया है, ओ गुरसिख गुरसिख नहीं गरीब नवाज।

चोरी ठगी यारी दा पैसा कतर कर दें ना। साहब सचे पातशाह महाराज कहंदे ऐसे गुरसिख दा कदे वसा ना करना, क्योंकि हक पराया नानका ओ सूअर उस गाए, गुर पीर हामा ता भरे जा मुरदार ना खाए। मैं भी ऐसे सिख दी हामी नहीं भरांगा जेड़ा छल फरेब दा धन इकट्ठा करदा ते जेड़ा गुरु नूं दसवंध नहीं देंदा, किरत दस ना हुंदी नहीं करदा। ऐसे गुरसिख दी गवाही सची दरगाह।

गरीब नवाज सचे पातशाह कहते एक नरक नहीं हजारा नरक भोगदा जन्म लैंदा फिर नरक विच पैंदा जन्म लैंदा फिर नरक विच पैंदा। इथों गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने कहा भाई नंद लाल मेरा गुरसिख दस नहों दी किरत करे छल फरेब दा धन दौलत मेरी दरगाह अंदर हाजिर नहीं होएगा। गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज की दरगाह

गुरु की संगत विच आउन वाली मां भैन उस नूं मां भैन दा रूप जाने, धी नूं धी दा रूप जाने, बुरी निगाह नाल ना वेखे। साहब गरीब नूं अज सच्चे पातशाह महाराज फरमान करदे ने, गुरु गोबिंद सिंह महाराज भाई नंद लाल जी, माए भैन जो आवे संगत, दृष्ट बुरी देखे तिस पंगत, सिख होए जो करे क्रोध, कन्या मूल ना देवे सोध। जेड़ा गुरसिख सत संगत अंदर बैठी हुई मां भैन नूं मां भैन ना जाने, धी नूं धी दा रूप ना जाने, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे हन ऐसे गुरसिख दा मैं दर्शन करके राजी नहीं, वसा लैके राजी नहीं। ते जेड़े कुड़ी मार हुंदे ने ना, जन्म तो ही बच्ची दा गला घुट देना, गरीब नूं अज सच्चे पातशाह कहंदे गुरसिख दा सुभाव निम्रता सहित होवे, क्रोध ना करे। बच्ची ने घर अंदर जन्म लिया, उस नूं बच्चे दा ही रूप समझ के पाले, क्योंकि सिंह मेरा जेड़ा है उस पुत्र है, बच्ची जेड़ी कौर है ते छोटा सा पुत्र है राजे दा बादशाह दा, इस करके बच्ची ते बच्चे नूं इको

जन्म कुश्ती होए मरे सिख होके सिर ते टोपी धर लैनी टोप लै लेना भाव के पग बन के रख देनी माया वाली पग ला बन के रख देनी काफी दिनों तक बन्नी रहनी रोजाना उसनु चुक के सिर ते धर देना। गरीब नु आज कहंदे हाथ किस वास्ते दिते ने जे अपना दस्तारा नहीं सजा सकते। जे अपना दस्तारा अपने हाथी रोजाना सजाओ खूबसूरत लगो गुरु के सिखो। इस करके गरीब नु आज कहंदे ओ मेरा सिख ने जेड़ा टोपी सिर ते रखदा ओ सत जन्म कोड़िया दे जन्म दे विच बतीत करदा। गरीब नु आज कहंदे तैनू हाथ क्यों दिते कोड़ा हो जांदा। होए सिख सिर टोपी धरै सात जन्म कुश्ती।

रोजाना दा उचारण वाहगुरु होवे, अठे पैर कम ते भी वाहगुरु वाहगुरु करदा रवे, दुकान ते बैठा वाहगुरु करे, घर विच बैठा वाहगुरु करे, रसना दे उपर वाहगुरु वाहगुरु वाहगुरु दा टिका होवे, ते वाहगुरु नू हिरदे अंदर वसा लवे, ऐसा वाहगुरु हिरदे च वसे भई वाहगुरु का खालसा अगो आउंदा होया दीदार दे देवे, भई गुरु का सिख आ रहा है ओनू मिलन वास्ते अगा फतेह बुलाउन वास्ते जावे, जाके सामने गुरसिख दे दर्शन करके वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह बुला के गुरसिख दा हाल पुछ। ए ना होवे भई गुरसिख नू वेख के राह ही छड जावे ते फतेह ते अलग रह गई। अज दे समय दे अंदर गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत करदा है। गरीब नवाज सचे पातशाह ने आने वाले समय नू वेख्या, इस करके ए पूरने पा दिते, गुरसिख गुरसिख कोलो नफरत नहीं करेगा,

शस्त्रहीन एक बू न होई रहतवान गुर का सिंह सोई। गरीब नवाज कहंदे जेड़े पांच ककार दिते ने ना खालसे नूं पहनाए ने, पूरी यूनिफॉर्म तो बगैर, पूरी ड्रेस तो बगैर गुरु का सिख सिंह नहीं रह जांदा, खालसा नहीं रह जांदा। जिवें किसे ऑफिसर दी यूनिफॉर्म होवे, वर्दी होवे, उन्हूं लाजमी है वी जदों ऑफिस विच जावे, जदों काम ते जावे, जदों मालक दी हजूरी अंदर हाजरी होवे, उदों ओ जित्ती हुई ड्रेस नूं पहने। गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज ने खालसे नूं पंज ककार बख्शे ने, ते गरीब नवाज कहंदे मैं ये बर्दाश्त नहीं करांगा वी मेरा गुरसिख पंजा ककारां दा धारनी ना होवे, ला के फिरदा रवे, ऐसी गल ना होवे। शस्त्रहीन ए कबू ना होई, कदे वी शस्त्रहीन ना हो। शस्त्र हमेशा पास रखे, शस्त्र ते शास्त्र। शास्त्र है श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज, ते शस्त्र है ए जेड़े पीर हन महाराज ने दिते ने रखिया वास्ते। ए हामी भरनगे सच्ची दरगाह दे अंदर के गुरु का सिख शस्त्रां दे नाल शास्त्र दी पूजा करदा सी। शस्त्रहीन ए कबू न

नशियां दा सेवन करना। गुरु का सिख निज नारी के संग अपना जीवन बतीत करेगा, पर नारी दा सुपना भी इसकी जिंदगी अंदर नहीं आएगा। जुआ कदे नहीं खेडेगा, क्लबां दे अंदर जा जाके जुए खेलने, घरां दे अंदर बह के ताशा खेडनियां, कार खेडने, गुरु के सिख नूं मनाही है। पर नारी इहदा सेवन ना करना, जुआ ना खेडना, असत झूठ ना बोलना, चोरी ना करनी, मदरा शराब नशे आदक दी वरतों ना करनी। गरीब नवाज कहंदे ए पंज ऐब ने जगत दे, ए सिंह तज जावे ओ जवान गिनिया जाएगा, ओही असली मेरा जवान होएगा।

कीर्तन तो बाद कथा होंदी सी शाम नूं। अज भी पंजाब दी धरती दे उपर कीर्तन तो उपरंत कथा होंदी है, कथा भी सुननी। जेड़े इन्हां नियमां दे धारनी होणगे ओह सिख अमरापुरी दे अंदर निवास करनगे, जिथे एक बार जाके गुरु का सिख मुक्त हो जांदा। सचखंड जिसका नाम है उथे मैं दर्शन देंगा गुरु के सिख नूं। जिथे मेरा निवास उथे गुरु के सिख।

गुरु के सिखां कोल धन अपार है ते फिर जिस कोल धन हुंदा है उसकी कीर्ति हुंदी है जस हुंदा है। कीर्ति नूं सुन के गुरु का सिख अहंकार विच ना आवे। सुख गुरु ने दिता है सुख नूं वेख के फुलिया ना फिरे औगण ना करन लग जे। धन कीर्त सुख राज बढ़ाई युवती जित सुत विद्या बहु पाई। दूजी है विद्या विद्या पढ़ के विचारवान वड्डा हो जांदा है। किसे अहुदे ते पहुंच के गुरु ना भुल जावे। किसे अहुदे ते चंगे ते पहुंच के गुरु की सिखी ना भुल जावे। युवती सुत विद्या बहु भाई ए सब दात गुरु की जाने। ए सारियां दियां सारियां गुरु कियां दातां जाने। दातां जान के मन अंदर रंचक मात्र भी अभिमान ना आवे ना अभिमान करे ना अहंकार करे। गरीब

गुरसिख दे जीवन दा नक्शा, गुरु के सिख दा जीवन ऐसा होवे, पवित्र होवे, ते फिर ओ गुरु दियां खुशियां प्राप्त हासिल कर जाएगा। नहीं ते गरीब नवाज कहंदे हन, रहत बिना ना सिख कहावै, रहत बिना दर चोटां खावै, रहत बिना सुख कबू ना लह। कदे भी सुख उसनू नहीं मिलेगा जिसने रहत त्याग दिती है ना। पाहल पी कुकर्म कमावत, पाहल पी के कुकर्म कमाउंदे ने उन्हां नूं तनखाही या दंड दिता जांदा। गरीब नवाज सच्चे पातशाह महाराज ओनू कहंदे भी खालसा पंथ की बरादरी चो ओनू छेक दिता जावे जिहड़ा अमृत छक के ते कुकर्म कमाउंदा। भाई नंद लाल गरीब नवाज सचे पातशाह दा प्यारा सिख, इसने ए रहतनामा गरीब नवाज सचे पातशाह जी महाराज कोलों लिखिया। भाई प्रहलाद साहब जी ने लिखिया, भाई देसा जी ने लिखिया, बड़े बड़े हवाले हैं साहब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज दे दिते हुए इस रहतनामे दे। ये गुरु के सिखो साहब सचे पातशाह जी महाराज जी दे वतना मुताबक अपने जीवन नूं बतीत करिए। गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज।

जिम बुलावे तुम बोले स्वामी कुदरत कवन हमारी, साध संग नानक जस गायो। साध संग नानक जस गायो, जो प्रभु की अत प्यारी। धन गुरु नानक देव जीओ महाराज, गुरु नानक पद पंकज वंदन। गुरु नानक पद पंकज वंदन, सिमरो अंगद दुख नकंदन, अमृत

कहां बुद्ध प्रभु तुच्छ हमारी, बन सके महिमा जो तिहारी। हम ना सकत कर सिवत तुम्हारी, आप ले हो तुम कर।

0: साध की महिमा भेद न जाने, जेता सुने तेता वख्यान। साध की उपमा तेह गुण ते दूर, साध की उपमा रही पूर। साध की शोभा का नहीं आना, साध की शोभा सदा। सतगुरु जुगो जुग अटल चव तख्त मालक, नशा पास श्रीनी जगदी ज्योत। शब्द अवतार साहेब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी पवित्र गोद विच, ब्रह्म ज्ञानी बाबा जस्सा सिंह जी दे पवित्र तपो भूमि तपस्थान ते आप जी जिन्ने भी माई भाई नमस्कार करन दे लई, अपनी हाजियां लगवाउन दे लई, सतसंगत हरी जस कीर्तन दा लाभ उठाउन दे लई आए हो, वडभागे हो। जो अपने जीवन दियां अमोलक घड़ियां गुरु चरणा विच ला के सपनियां बना रहे हो, सचमुच इन्हां घड़ियां दा कोई मुल नहीं है। सो गुरु महाराज जी दी तुरकी बाणी दे अखंड जाप चल रहे हन। साहिब श्री गुरु नानक देव महाराज जी दा अवतार दिहाड़ा आ रहा है। गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी का 400 साल प्रकाश दे संगतां मना रहियां हन। साहबजादे बाबा जीत सिंह जी, बाबा जुझार सिंह जी, बाबा जोरावर सिंह, बाबा फतेह सिंह जी, माता गुजर कौर जी 300 साल दिहाड़े संगतां मना रहियां हन। ये कितने दिहाड़े कट्ठे होए हन। ब्रह्म ज्ञानी महापुरश बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हां दी पवित्र याद नूं मनाउंदे होए आपां रल मिल के हाजरियां लगवाउण दे लई पवित्र धरती ते आए हां, बड़भागे हो। महापुरशां दी महिमा बाणी दसदी है, वेदां तों वी वाहरी है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरू।
0: वेदां तो भी वाहरी है। श्री सुखनी साहिब दे विच महाराज गुरु अर्जन देव पातशाह प्रमाण करदे हन, साध की महिमा वेद ना जानना। वेद भी उन्हां दी महिमा नूं जान नहीं सकदे। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, अगम गमता तो रहत। इतनी डूंगी है, इतनी अगाध है, जिवें समुंदर दा अंत नहीं आउंदा, इसे तरह महापुरशां दा भी कोई अंत नहीं आउंदा है। जो वाहेगुरु परमेश्वर बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडां दा मालक है, जिस दी सृष्टि दा कोई पारा पार नहीं आउंदा है। बड़े साइंसदान लोग, विज्ञानी लोग बड़ियां खोजां कर रहे हन, परंतु सात संगत उस दी कुदरत कायनात दा अंत नहीं किसे नूं आया। बाणी दे विच महाराज बेअंत लिखदे हन, बेअंत बेअंत, जिस दी सिफती दा भी कोई अंत नहीं है। सो जो ऐसे वाहगुरु परमेश्वर जो बेअंत है, करोड़ां ब्रह्मंडा दा मालक है, जो रूहां जो आत्मावां उस दे नाल जुड़ गईयां, उस दे विच अभेद हो गईयां, जिवें एक बूंद पानी दी समुंदर दे विच मिल गई, उस समुंदर दा रूप हो गई। बोलो सतनाम। ऐसे तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर, ब्रह्म ज्ञानी खुद परमेश्वर दा रूप हो जांदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जिवें बूंद पानी दे विच मिल गई, जोत जोत दे विच मिल गई, सूरज किरण मिले, जल का जल हुआ राम। इस तरह महापुरश ब्रह्म ज्ञानी संत महापुरश साधु किसे भी सास पवित्र लफ्ज नाल उन्हां पवित्र आत्मा नूं संबोधन करिए, उन्हां दी महिमा बेअंत है, क्योंकि ओ बेअंत दे विच मिल गए, बेअंत दा रूप हो गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: परमेश्वर दा रूप हो गए, जमन मरण तो रहत हो गए। श्री सुखनी साहिब दे अंदर ए दो अष्टपदियां, साध की महिमा वेद न जाने, ब्रह्म ज्ञानी मन साचा मुख साचा सोए, अवर न पेखा एक सिवन कोई, नानक ए लक्षण ब्रह्म ज्ञानी होए। इस सुखनी साहिब दे अंदर गुरु महाराज जी ने सात संगत वर्णन कीता, बड़ी महिमा वर्णन कीती है। आओ ऐसे ही महापुरशां दी पवित्र याद विच बैठे हां, जिन्हां ते ए लफज ए बाणी पूरा ढुकदी है। बोलो सतनाम। वज वज के तिना हिस्सों दे विच बोल के अपनी रसना पवित्र करया करो, अपनी हाजरी लगवाया करो।

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोज महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप
1: परमेश्वर।
0: पार्वती दे समेत शिवजी भगवान, भगवान का दर्जा है जिन्हों देवत्या दे सर्वोत्तम मने गए हैं। जा रहे हैं किसी जंगल के रस्ते, एक जगह ऐसी आई जिथे बारंबार नमस्कार करते हैं, मत्था टेक रहे हैं, धूड़ चक चक के मत्थे ना ला रहे हैं, धन धन कर रहे हैं, धरती से नमस्कार करते हैं बारंबार, जिन्हों लोग नमस्कार करते हैं। पार्वती पूछती है, हे पति देव, हे भगवान, इत्थे तां कोई धार्मिक स्थान नहीं है, कोई तीर्थ नहीं है, इत्थे कोई धार्मिक ग्रंथ नहीं है, कोई सतपुरुष नहीं है, तुसी किसनू नमस्कार करदे हो, तुसी किसनू मत्था टेकदे हो, क्यों तुसी

0: ब्रह्म ज्ञानी को खोजा महेश्वर, नानक ब्रह्म ज्ञानी आप परमेश्वर। बाबा जस्सा सिंह जी जिन्हों का जीवन बड़ा अद्भुत है, सत्संगत संत बाबा हरदेव सिंह जी जिन्हों की शरण के इतनी तपस्या की, इतनी भक्ति की जो अखरां द्वारा वर्णन नहीं की जा सकती। बोलो
1: सत्संग।
0: बचपन तो ही आप जी का सुभा साधु सुभा सी, इन्हों के पिता जी भी बड़े गुरमुख सन। बचपन तो ही हुण जिस तरह की शिक्षा माता पिता देंदे हन उसका भी बच्चों के जीवन ते असर हुंदा है। पिता जी गुरमुख सन, उन्होंने बड़ी शिक्षा दे के बाबा जस्सा सिंह जी के जीवन नूं ए सी गुरमुख की कठाली विच ढा लिया। ते साध संगत जदों शादी हो गई ते साध संगत शादी तो उपरंत आप जी का सुभाव उस तरह का ही साधुओं की संगत करने वाला सी। बोलो साधुओं की संगत करनी, दान पुन करना, इस तरह का सुभाव बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां दा सी। हुण साध संगत सहुरे जाके भी आप जी का सुभाव ऐसा ही रहा। आया गया कोई साधु फकीर, उन्होंने बड़ा प्यार करते सन। गुरु नानक साहब जाके साधुओं को बैठा करते, भाई फकीरों को बैठते। सो बाबा जस्सा सिंह जी साध आए साधुओं नूं फकीरां नूं जो कुछ भी घर आउंदा उह छकाउंदे, सेवा करदे। ते साध संगत भावें घर वाला उसके ख्याल तां ठीक सन, परंतु जिहड़ी चक हुंदी है बड़ी माड़ी हुंदी है। लोगां दे ख्याल इस तरह दे हुंदे हन, किसे दा सुखी जीवन देख के लोकी जरदे नहीं हन। सो बाहर साध सुंदो खेतीबाड़ी दा वगैरा दा होर जो कुछ भी काम काज करदा है उसके कन्न भर दते कि तू तो इत्थे खेतां विच कम करदा रहिंदा हां, घर वाली तेरी कदे ख्याल रखिया। वह साधुआं नूं ही खुआई जांदी है। ते साध संगत वह गुस्से दे विच आके कहिंदा है कि मेरे घरों निकल जाओ। बाबा जी कहिंदे नहीं, असीं इत्थों नहीं जा सकते, पिता जी ने ही शिक्षा दित्ती सी बेटा, उस घर दे विचों बिना बुलाए तू नहीं आना है। सो साध संगत परंतु हुण उह कित्थे मानदा है, जबरदस्ती बिठा के गड्डे ते जां रस्ते बाबा जस्सा सिंह जी उन्हां नूं साध संगत पिंड छड जांदा है, पिता जी कोल छड दिंदा है। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: जबरदस्ती हुण पिता जी सोचदे हन बेटा असीं तां तुहानूं कहा सी कि बिना बुलाए तो आउणा नहीं है, फिर तुसीं बिना बुलाए तो किवें आ गए। कहना कीता पिता जी असीं खुद नहीं आए, जबरदस्ती छड के गए हन। ऐसी गल, ऐसा गुनाह, कहिंदे पिता जी तुहाडी शिक्षा ही गुनाह बन गई है। जिवें तुसीं शिक्षा दिंदे सी असीं तां उही कुछ करदे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता। साधुआं दी संगत करनी, साधुआं नूं प्रसादा छकाउणा, इह तुहाडी शिक्षा है। बोलो सतनाम। असीं तां उसे तरह ही कर रहे सी, होर तां कोई गुनाह नहीं कीता, फिर हुण की हो सकदा है, की करिए हुण, किसे नहर च धक्का दे दिओ। कहिंदे पिता जी कहण लगे तां हो नहीं सकदा, आत्मघाती जगत कसाई, आत्महत्या करनी इह तां बहुत वड्डा पाप है, फिर की करिए। पिता जी सोच रहे हन, साध संगत बाबा हरदित सिंह बोलो सतनाम। अमृत छकिया, पंजां प्यारां तों अमृत दी दात प्राप्त करके माता जी नूं कहिंदे हन, माता जी मैनू पंजां प्यारे ने नाम दी दात दत्ती है, ते नाले कहा जो तेनू ये गुरमंत्र दत्ता है, मूल मंत्र दत्ता है, नाम दत्ता है, इस नूं स्वास स्वास जपना है। बोलो सतनाम। इनू भुलाउणा नहीं है, विसारना नहीं है, नाम नूं कदे नहीं छड्डना। ये नाम दी दात गुरु तों जो मिलदी है, जे माता जी आग्या होवे तां फिर मैं थोड़ा जिहा नाम जप लां। बोलो सतनाम। कहिंदे हां बेटा जरूर जपो, जरूर जपना चाहिंदा है। धन बाबा हरदेव सिंह जी साध संजों कच्चे कोठे दे विच बैठे, 22-23 साल बीत गए। बोलो सतनाम। ऐसा सिमरन लत्तां भी साध संग कमजोर हो गईयां, तुरिया नहीं साध संग, इतने साल बीत गए तपस्या दे विच ही। बोलो सिमरन देव जिन्हां दी इतनी बंदगी सी, इतनी भगती सी, ब्रह्म ज्ञानी महापुरशां नूं भी। ते साध सुण पिता जी सोचदे हन की करिए, बीबी जस्सा ते साध संगत बाबा हरदित सिंह उन्हां दी शरण दे विच आए। बोलो सतनाम। शरण दे विच आए आके बेनती की महापुरशो कृपा करो इस बालक नू अपने चरनी ला लो। बोलो
1: सतनाम श्री वाहे।
0: इस बालक नू अपनी चरनी ला लो। बाबा हरदेव सिंह जी कहंदे हन बालका ए तां बालकी है भाई, ए तां बालकी है। पिता जी कहंदे हन महापुरशो आप जी दी निगाह दे विच बालकी ते बालक च कोई अंतर है? आप दी निगाह दे विच तां सब इक्को ही हन। कहंदे हां साडी निगाह च तां इक हन, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। बोलो सतनाम दुनिया दी इक निगाह नहीं है। ब्रह्म ज्ञानी नूं तां सारे ब्रह्म ही नजर आउंदा है। हुण साध संगत कहंदे साडी निगाह च तां इक्को ही है, दुनिया दी निगाह तां इक नहीं है। कहंदे महाराज इतनी भगती इतनी तपस्या तुहानूं दुनिया दी परवाह है? बोलो
1: सतनाम
0: मैनूं तां कोई परवाह नहीं है। पिता जी कहण लगे मैनू तां कोई परवाह नहीं, तुहानू दुनिया की परवाह है? महापुरश हस पे कहण लगे वाह वी वाह, तू तां बई अगों दी होके घेरदा है। बोलो सतनाम। ए बड़िया सास लम्मिया विचारा हन। सास बाबा जस्सा सिंह ऐसा जीवन ते सास संगत क्यों बई तैयार है? फिर ए लाइन बड़ी औखी है, ये फकीरी करनी बड़ी औखी है, भेस धारना सौखा है। हां महापुरशो बाबा जस्सा सिंह ने कहना कीता इस तो बिना कोई रास्ता नहीं है, जो हुक्म होवेगा मनोगे? हां मनांगे। महापुरशा ने कहना कीता वही गल्लां दे नाल नहीं गल बननी, ये बहुत औखा रास्ता है, बड़ी औखी मंजिल है। बाणी दसदी है

0: सेवक का धर्म कितना कठोर है, मुर्दा होए मरीद ना गलनी हो। ठीकरा चक के सास मंगन तुर पे, हुक्म दे विच जाओ बालकिया, जिथे व्याह सी उथो ही मंग के लेके आओ। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: इतना लोक लाज, सास संगत कुल लाज, वेद लाज तिने त्याग दतिया। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: लोक लाज, कुल लाज, वेद लाज तिने लाजा का त्याग करके बाबा जस्सा सिंह जी सास संतोषे नगर दे विच जांदे हन। अगे सास संगत लोगों ने पहचान लिया कौन है जस्सा भाई, इसने कोई गुनाह की गलती कीती सी, क्यों इसनु घरों तक किया गया। पकड़ वास्ते सास संगत मगर भाई, उसनु भी कई लोग लानता पाउन लग गए घर वाले नु, भी दस तू की गुनाह कीता सी इसने। हुण सास सिंह जदों पकड़न वास्ते नेड़े आए, बाबा जी दौड़ के भज के बाबा हरदीप सिंह उन्हां दे कोल आ गए। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: सो सास सिंह तैसा उच्चा जीवन सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दा सी। बोलो
1: सतनाम श्री वाहिगुरु।
0: मुर्दा होए मरीद ना गल्ली होवना, इतना हुक्म मनना अपने गुरपीरां दा, महापुरशां दा। इस सास बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे सास हिस्से दे विच आउंदा है। बोलो
1: सतनाम।
0: सास संग 24-24 घंटे बाबा हरदेव सिंह जी बन के सास संगत कीड़ियां दे पौन ते सुट देंदे सी ना कहंदे। 24-24 घंटे, एक दिन, दो दिन, तीन तीन दिन सास संगत उसे तरह ही हुक्म दे च पए रहंदे। बोलो
1: सतनाम।
0: किते सास नूं परख हुंदी, बाबा हरदेव सिंह जी सास संग लेल दे विच सास संगत पा के गोले चलाउंदे, सास संग बाबा जस्सा सिंह उन्हां दे मत्थे दे विच सास संगत मारी जांदे, मत्था चार चार उंगल, छे छे उंगल सास संग तोपण जांदा, परंतु सी ना कहंदे। बोलो
1: सतनाम।
0: देखण वाले हैरान हो जांदे, परंतु किसे नूं की पता सी बाबा हरदेव सिंह जी केड़े घाड़त घड़ रहे हैं। बोलो
1: सतनाम श्री
0: वाहिगुरु। सी ना कहंदे, मेरे गुरु ने, मेरे महापुरुष ने, इस करके सी नी। सात संगत ऐसा जीवन बाबा जस्सा सुना ना सी। बोलो इतना हुक्म,
2: मुर्दा हो जबे मरीद गली हो बना।

के सबे घट राम बोले रब दे प्यारे जिना ने शब्द दी कमाई की थी ओ फिर जिधर वेखदे हन उन्हां नूं परमेश्वर दी जोत ही नजर आंदी कोई मारा नहीं कोई चक्का नहीं ए निरंकार सारिआं विच तूं आप ही धर्मिआ होए सारिआं विच तूं आप ही तां बोलदा सब में जोत जोत है सोए तिस दे चानण सब में चानण होए तेरी जोत है तां चानना है अखा

मैं जिधर वेखदा हां बीठल ही ईश्वर ही ईश्वर नजर आउंदा ते जिथे वेखदा ईश्वर अपने आनंद विच मगन होया है। मैनू कोई दूसरा नजर ही नहीं आउंदा तां पंडिया ने आख्या कदी दुध दा ही भोग लवा लिया कर तां भगत नामदेव जी।

ख्वाहिशा हो रही कन्हैया का जीवन जिन्हों धन गुरु तेग बहादुर सच्चे पातशाह जी की सेवा करके ब्रह्म ज्ञानता प्राप्त हुई ते दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने जदों धर्म

की पवित्र वाणी साहिब श्री गुरु तेग बहादुर महाराज जी की उच्चारण की हुई है। गुण गोविंद कायो नहीं जन्म आकारत की, कहो नानक हर पज मना जय विद जल को मीन। इन्हां सारिया श्लोकों विच श्री गुरु तेग बहादुर जी महाराज सानू एक सुनेहा देना चाहते हैं।

मूर्ख लोग अजान, कहो नानक बिन हर भजन बिरथा जन्म सिरान। मूर्ख बंदा माया दी खातर दिन रात नठिया फिरदा है, बई तू संगत विच नहीं आंदा जी, मेरा कारोबार इन्ना है, मेरे कोल टाइम ही नहीं होगा, मेरा काम इन्ना है। ओए पलिया, जदों भुख नाल मरदा सी उदों तेनू गुरु चेते सी, उदों ते दोनों वक्त गुरु घर आके अरदासां करदा सी, हुण तेरा कारोबार

श्री रामचंद्र जी आखण लगे, हसण वाली गल ए है, इस जीवन तो पहला ना ए एक राजा हुंदा सी, दुनिया ते इहदा राज सी, बड़ा वड्डा राजा सी, इंद्र जिस दा नाम सी, इन्हें सिमरन नहीं कीता, दिन रात पाप कीते, ते हुण ये 84 लख जून दे विच पिया होया है, कीड़े दी जूनी विच पिया है, ते मैं हसदा ता हां, ऐ पलिया तेनू धन भी दिता, सोने महल भी दिते, घोड़े गड्डियां भी दिते, तू निरंकार नू फिर भी चेते नहीं रखिया, ते हुण देख ला किहड़े दुखां विच फसिया होया है। जे साडे कोल सुख चंगे ने ना, ते प्रभु नू भुलाणा नहीं चाहीदा, सगों ज्यादा धन्नवाद करना चाहीदा है, नहीं ते जिहड़ा आण वाला जीवन है ना, दुनिया विच ते दुख पाना ही पाना है। जिहड़े सिमरन नहीं करदे दुनिया विच भी दुख पांदे ने, घर दे कलेशां दे विच लड़ाइयां झगड़ियां विच फसे रहिंदे ने, ते जिहड़ा अगला जीवन हुंदा है वह भी खराब कर लैंदे ने, 84 लख जून दे गेड़ विच फस जांदे ने। नहीं बई, जे तैनू मालक ने सुख दिते ने ना, इन्हां सुखां दा आनंद भी माण, ते गुरु नू भी चित रख। गुरु नानक देव जी महाराज कहिंदे, नीत नीत घर बंधिए जे रहना होए, बहुता कुछ उत्थे बनाईदा है जिथे पक्के रहना होवे, इत्थे तो पक्के नहीं रहना, एक ना एक दिन चला जाना है। जात माल रिश्तेदारां वल, दोस्तां मित्रां वल, पिंड नगर वल किन्ने चले गए ने, ते तू किन्ना चिर बैठा रहेगा। फरीदा किथे तेंडे मापिया, बई किथे ने तेरे मापे जिन्हां ने तेनू जन्म दिता सी, वो तेरे तो लद गए ने, चले गए ने, इसी तरह एक ना एक दिन तू भी चले जाना है। जो सुख को चाही सदा, शरण राम की लेहे, कहो नानक सुन रे मना, दुर्लभ मानुख दे। जे सुख चाहुंदा है ना, ते सुबह शाम संगत विच बैठ के सवाल सफले करया कर, ए मनुखा देही तेनू बार बार नहीं मिलनी, एक बार मिली है बार बार नहीं मिलनी। नहीं सिमरन विच जुड़ेगा फिर 84 लख जूना दे विच पै जावेगा। एक एक सलोक जिंदगी भर दा ज्ञान है। तुसी गुरु तेग बहादुर महाराज जी की पवित्र बाणी 9वें महले दे सलोक सरवण कर रहे हो। एक एक सलोक सानू सुचेत कर रहा है, जेड़ा तेरा एक भी सवास सिमरन तो बगैर गुजर जांदा है, अजाई चला गया है। कार बिहार करदिया होया वाहिगुरु करी जाया कर, घरों कम कार ते टुरन लगियां सवेरे गुरु कर नमस्कार कर जाया कर, कथा कीर्तन सुन लिया कर। दिन भर दे विच 2.5-3 घंटे सवासां दा दसवंध बनदा है, जरूर गुरु नू दे दिया कर, बैठिया कर संगत विच सवास सफले करिया कर। गुण गोविंद गायो नहीं जन्म अकारथ की, प्रभु दे गुण गाए नहीं घर दे कम सारे कीते ने, तू जन्म बेकार विच गवा लिया है, सतगुरु सानू आख रहे ने।